क्या गुण आख बखाना जो सेवा है जो सेवा है तुझ जी जा नानक तिन कुरबाना हर त्यावै हर त्यावै तुझ जी से जन जुग मह सुख वासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पहो सब गवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता

सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवन त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारिया है चुन चुन सतर हमारी मारिया है पाप हाद मुझे भरिया मरण काल का त्रास भरिया जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जो कर हो रच्छा।

हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को तिहना बहुर करो कबता बिद नाना कृष्ण जथा मत चित्र चारो चूक होए कबल्यो सुधारो कबियो बाच दोहरा जो निज प्रभु सो कहा सो कहूं जग माहे जो ते प्रभु को त्याय है अंत सुर को जाहि दोहरा हर हर जन दोई एक है बेबिचार कछ नाही जल ते उपज तरंग जाऊं जल ही बिखा समाज दोहरा जब आए सु प्रभु को तपयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कहत सुनाए का बाच दोहरा ठाट पयो मैं जोर करू बचन कहा सिर न्याय पंत चले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुम्हारे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा कालपुर की देह मोह कोटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा कित राक्षस करोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाखत नेत सुर्ग बास रगबर कराओ सगरी पुरी समेत चौपाई जो एह कथा सुन अर गावै दुख पाप तेह निकट न आवै बिशन भगत की ए फल होई आदमे आसम सकै न कोई सम्मत सत्रह सास पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लोह लो सुधारा दोहरा नेत्र तों के चरण तारु सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो राघवर कथा प्रसंग साध साध जानो नहीं बाद सबाद बेबाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया

सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने श्री असबानो कृपा तुमरी करो मैं न कहो सब तो बखाने दोहरा।

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन बचिया बादहिया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जनी वसाया।

सतगुर रहिया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया भरपूरे।

जिसका सब साधारू जे को खावा जे को पुंचा तिसका होय उधारू एहि वस्तु ताजी न जाई नित नित रख उर तहारू तम संसारू चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारू श्लोक महला पंजवा।

यार, अहरन मतभेद अथी यार। पाव खला अगनतपताओ भांडा पाव मृत तित ढालो घड़िए सब सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नद निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महाते दिवस राम दई दाया खीला सगल जगत चंगे आईया बुरी आईया वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गई मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

بير أبار بدي بريار بشار حصار كي تار بچايا تور درين تور ديس ملند مواسن ماتك جان كي مان بلايا غاڑ گڑان كي تورن هارو سو باتن هي چك چار لبايا صاحب سري سب کو سرنائي کو جاچك انيك سو ایک دوايا دان ودي فنندر سات رفوت پر ایک پان جپائیں گے جیب جتے جال میں تھال میں پال ہی پال میں سب تھاب تھپائیں گے पुन प्रतापन बार जाता नव पापन के बहुपुंज खपाएंगे साध समूह प्रसन्न फिरा जाग सत्तर सबाय अवलोक जपाएंगे ईमान इंद्र जिंद्र राध पो जान तलो को राज करांगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वयं बरसात बरांगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सच्ची पात अंत फसी जम पास परांगे जे नार श्रीपात के प्रास है पाग ते नार फिरना देह तरांगे कहाँ पायो जो दो लोचन मुंद कह बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नाथ प्रियली सास मंदर लोग गयो पर लोग गवायो बास की बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो साच का हो सुरले हो सुबैग जन प्रेम की उतनी ही प्रपायो काहू लै पाहन पुत्रियो सिर काहू लै लिंग घर लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पचा को शीस नवायो को बतानक पूजत है पास को मृतानक पूजन तायो को क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतानक पूजत है पास को मृतानक पूजन तायो को क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाह दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई अपनी करो हादर छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा अमरे दोष सभ्यत मुकाब हो आप हादय मुह बचाव हो सुखी बसै मोर परवारा सेवक सिख सभ्य करतारा और चरण कर दै करिया ईसा बैरन को आसन करिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की राह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चौन सूत्र हमारी मारिया है आप हाथ दै मुझे अबरिया मरण काल का त्रासन वरिया है वो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्त हो जो करे हो रच्छा राख ले हो मोह रखन हारी साहिब सन सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो परिचा तर दसकंता काल पाए ब्रह्मा अवतराऊ काल पाए शिव जू अवतराऊ काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जमन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जमन काल सब जग बनायो देव दैतो जचन उपजायो आदंतिक अवतारा सोई गुरु समझेव हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को साव गुण सुख दियो सुदृढ़ को पल मोहबत कियो कड़कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिटी ते कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान कटकड़ के पट पट की जाना जब कर करा कर तारा प्रजा तर तब देह पारा जब या कर कर तो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उचारा तुम सब ही तेरा निराल मजानत बेद भेदे आलम निरंकार निर्भकार निर्लंब आदि नीला नाद सांभ ताका मुड़ चारद भेदा जा को भेवन पावद बेदा ता को कर पाहन अनुमानत माह मूड़ कच भेद न जानत महादेव काओ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न है भेव आप अपनी बुद्ध है जीती बरणत भिन्न भिन्न तोह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा के बिद सजाओ प्रथम संसारा एक रूपा नूप स्वरूपा रंग भयो राव कहे भूपा अंडज जे रज से तज कीनी ओत भुज खान बाहर रस दीनी कह फूल राजा हो बैठा

गुरप्रसाद असा महला पहला वार श्लोक का नाल श्लोक की माले पहले के लिखे टुंडे असरा जी की तुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने देवहारी सदवार

मल भला मुसलमान सिर्फ शरीर पर प्रकरण विचार बंदे से जे पवे विच बंदे वेखण को दीदार हिंदू साला ईसाला दर्शन रूपया पार तीर्थ नाम अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जो भी संत हम जितया रख नाम करता सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सत्य मन संतोख उपजय देना कै विचार दे दे मंगा सहसा गुण सब

29वां शब्द है। महाराज माया दे प्रति जड़ ते चेतन दो तरह की माया जीवन नूं व्यापदी है। ये रोग रूप आ जिवें रोग शरीर नूं लगे हुंदे ने, जड़ है ते चेतन है। तन नूं भी लगी हुई है रोग रूप है ते मन नूं भी ये पिया। ऐसी ये माया तन रूप ते प्रतख है ही है।

आप जी फरमान करते ने हर बिसरत सदा कुआरी वाहिगुरु नूं भुला के उहदे नाल साची प्रीत छड के जीव नूं हमेशा ही कुआर होना पैंदा है।

0: जिस मृत संकट मिटे दर्श तहारो होए।
1: राम नाम अर मैं गयो जाके सम नहीं कोए।
0: जिस मृत संकट मिटे

माला राग एक संग पंच बरंग नौ संग अलापै अठो नंदन नौ प्रथम राग भैरो वै करही पंच रागनी संग उच्चरही प्रथम भैरवी बिलावली

प्रबल चंद कौशक उभारा कौ खटियो पहरानंद गाए अष्टमाल कौशक संग लाए बुने आयो हिंडोल पंच नार संग।

0: नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी इस ठाकुर को रख मन माए
1: जे प्रसाद सुगंध तन लावे
0: इसको सिमरत परम गत पावे
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदर
0: इसे ल्याए सदा मन अंदर जे
1: प्रसाद ग्रह सुख बसना
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना
1: जे प्रसाद लांग रस को
0: नानक सदा त्याए त्यागन जोग
1: प्रसाद पाठ श्रम भंडावे
0: इसे त्याग कर अवर लुभावे
1: प्रसाद सुख सोए श्री जय
0: मन आठ पहर का काज जस गावी जय
1: प्रसाद तो सबको मन
0: मुक्ता को जस रसन खाने
1: प्रसाद ए और ता धर्म
0: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म
1: जी दत्त जब दर गमन पावे
0: नानक पाद से थी कर जावे
1: प्रसाद करो कंचन देही
0: लिव लाओ तिस राम स्नेही
1: प्रसाद तेरा उल्ला रहता
0: मान सुख पावे हर हर जस कहत
1: प्रसाद तेरे सगल सिद्ध टाके
0: मान सरनी पर ठाकुर तब ताके
1: प्रसाद तुझ को न पहुंचे
0: मन सा सा सिमरो प्रभु छे
1: प्रसाद पाई दला बदे
0: नानक ताकी भगत करे
1: प्रसाद रहो
0: मानती सिमरत हाल की जय मानती प्रभ को कबुना दिसारी राखपुर प्रभ अपने मना उठत बैठ सती जाई आई यहाँ मानान तेरी रख
1: प्रसाद करे पन बोदान
0: मन आठ पहर कर तिसका ज्ञान
1: प्रसाद तू चार बिहारी
0: इस प्रभु सा सा चितारी
1: हे प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभु सिमरो सदा अनूप
1: प्रसाद ते निकी जात
0: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: प्रसाद तेरी पत रहे
0: गुर प्रसाद आनंद जस रहे हे
1: प्रसाद सुने कर नालो
0: जय प्रसाद देखे बिस्माल
1: प्रसाद बोलते हैं मदरा सना
0: जय प्रसाद सुख जय
1: प्रसाद हाथ कर चले
0: जय प्रसाद संपूर्ण बले
1: प्रसाद परम गत पावे
0: जय प्रसाद सुख सह समावे
1: प्रसाद प्राप्त आ और कत लागो
0: गुर प्रसाद नानक न जागो
1: जय प्रसाद तू पर को संसार
0: तिस प्राप्त को मूल न मन विसार
1: प्रसाद तेरा प्रताप
0: रे मन मूल का को जाप
1: प्रसाद तेरे कार्य पूरे
0: तिसे जान मन सदा हजूरे
1: प्रसाद तू भावे साथ
0: रे मन मेरे तू राज
1: प्रसाद साहब की गत होए
0: नानक जाप जपे जप सोए
1: आज पाए जब सुनाओ
0: आप पाए सो हर गुण गाओ
1: कृपा ते होए प्रकाश
0: प्रभु दया ते कमल विलास
1: सन बसे मन सोए
0: प्रभु दया ते मत उत्तम होए
1: नानक तेरी मिया
0: आपको कछु न गिनो

0: जैसे जल में कमल देव जैसे सूर सरब को सोख जैसे राज रंग को लागे दुलवान जो मुस्ताको खोदे को चंदन लेप नानक जो पावक का सह स्वभाव जैसे महल लागे जला जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान मन अपने है सबके नीचा ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभाव करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सल की
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब मिला
0: ब्रह्म ज्ञानी ते का बुराया तया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत दर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगला
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरासा।

0: मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सहज निवास
1: नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं नाश
0: ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: होए चिंतो
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु।

0: ज्ञानी का कथन
1: ब्रह्म ज्ञानी शरद का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सच का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी बहुत ज्योत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का

0: रस सगणेश तारे हरि
1: नित्यनाहि रस का परस
0: मन प्रीत निरंजन तरस
1: भर्तृ रूप न पित्ते खै नेत्र
0: संग संग हेत
1: करण न सुनै काहू की निंदा
0: सत जाने आपस को मंदा
1: प्रसाद भिक्षा पर हर
0: मन की वासना मानते डरे
1: इंद्रिय चित्त पंच दोख ते रहत
0: नान कोट मते को ऐसा परस
1: ऐसो सो जिसे ऊपर सो परसन
0: विषन की माया ते होए पिन
1: कर्त होए न कर्म
0: इस वैष्णो का निर्मल कर्म
1: फल की इच्छा नहीं बाछ
0: केवल भगत कीर्तन संग राचे
1: अंतर अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अवरा नाम जपावे
0: नानक को पैसनो परम गत पावे
1: भक्ति भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: अंते बिनसे सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: इस भक्ति की मात उत्तम होवे
1: की टहल करे नित नीत
0: मंथन अर्पे जसन परीत
1: के चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: पंडित जो मन पर बोधे
0: राम नाम आत्म में सोधे
1: राम नाम सारस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो ना आवे
1: वेद पुराण सिमरत बुझे मूल
0: सुख में जा

0: जपैति स्की गत होइ
1: सा संपावे जन होइ
0: कृपा अंतर उतारे
1: पशु प्रेम मुख पात्र को धारे
0: सर्व रोग का बदनाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण गामा
0: ते ना पाई है धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर धर्म
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
1: तिसका नाम सह राम दास
0: तुम राम तिस नदरी आया
1: दास संतन पाए तिन पाया
0: सदा निकट निकट हर जान
1: सो दास कर गया परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: तिस दास को सब सोचे करे
0: संग आत्म उदास
1: ऐसी जुगत दानिक राम दास
0: जीवन
1: मुख सुख आवे
0: ऐसा हरक तैसा उत्सुक
1: सदा अनंत नहीं वियोग
0: ऐसा स्वर्ण तैसी सुमाटी
1: ऐसा अमृत तैसी दिखाटी
0: ऐसा मान तैसा रंग अभिमान
1: ऐसा रंग तैसा राजान
0: उपरताए साई जुगत
1: नानक उपर कहिए जीवन मुकत
0: ब्रह्म के सगले ठाम
1: जित जित राखे तैसा दिन नाओ
0: कर्ण करावण योग
1: प्रभावे सोई मनोग
0: आप होए अनतरंगा

0: रचना प्रवरचि बोविदानक परकारुष्पति
1: कई कोट होए पुजारी
0: कई कोट आचार्य हारी
1: कोट पय तीर्थवासी
0: कई कोट मन परने उदासी
1: कई कोट वेद के स्रोते
0: कई कोट तपी सर होते
1: कई कोट आत्म ध्यान तार
0: कई कोट तप का विचार
1: कई कोट नौतन नाम ध्यान
0: नानक करते का अंत न पावे
1: कई कोट पय अभिमानी
0: कई कोट अंत अज्ञानी
1: कई कोट कृपण कठोर
0: कई कोट अभिगातम निकोर
1: कई कोट पर दर्प को
0: कई कोट पर दुख न

0: कई कोट काले तक पाए,
1: कई कोट किए तनवंत,
0: कई कोट माया में चिंत,
1: जय पाणत तैराकी,
0: नान सब किस प्रभ के हाथे,
1: कई कोट भय बैराकी,
0: राम नाम संग तिन लिब लागी,
1: कई कोट प्रभ को खोजंते,
0: आत्म में पार ब्रह्म लहंते।

0: तिस बलिहारणे जल थल मैल सोए अश्वति
1: करम करावण करन जोग
0: ज्योति पावे सोए होकर अंत नहीं किस पारा वारा
1: मैं तार अतर रहा
0: मैं उपजे हुकम समावे
1: मैं नीच कूद
2: हुकमे ऊंच नीच ब्योहा।

0: क्रोध विकराल
1: कबहुँ सर्गे हो परालल
0: कबहुँ होए बह बड़ राजा
1: कबहुँ भिखारी नीच का साजा कबहुँ
0: अब कीरत में आवे
1: कबहुँ बला कला कहावे
0: प्रभु राखे तिव ही रहे
1: गुर प्रसाद नान सच कहे
0: कबहुँ होए पंडित करे व्याख्या
1: कबहुँ मोन तारी लावे ज्ञान
0: कबहुँ तट तीरथ स्नान
1: कबहुँ सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कीट हस्त पतंग होए जिया
1: अनेक जोन पर मैं परमिया
0: नाना रूप जो स्वांगी दिखावे
1: जो प्रभावे तिन्हे नचावे
0: इस पावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर न कोए
0: सात संगत के पावे
1: उस स्थान पे

0: सो जनानक दरगे परवान
1: कर्म करे हम तारे
0: श्रम पावे सगले बिरारे
1: तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार
1: अनेक जतन कर आत्म नैन्द्रवे
0: हर दर देखो कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: की रेन जाका मन होए
0: ओ नानक ताकी निर्मल होए
1: जब लग जाने मुझते कछ होए
0: तब इसको सुख नाही कोए
1: जब ये जाने मैं किछ करता
0: तब लग गर्व जो

0: सुपन मनोरथ विधे सब का जय
1: रंग सर्व सुख होए
0: बड़ भागे किसे प्राप्त होए
1: करावण आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: करावण करण
0: इसके बाद बहा विचार
1: दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभु सोए
1: की नो सौ अपने रंग
0: सबके दूर सबु के संग
1: जय देखे करे विवेक
0: आपे एक आपे अनेक
1: मरे न विनसे आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेश समझे
0: आपे रचिया सबके साथ
1: नो आप विस्थापन विस्तार
0: सब कुछ उसका ओ करने हार
1: उसे पहन कहो किछ होए
0: तां धनंतरे के सोए
1: अपने चलत आप करने हार
0: कौतक करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कहना जाए
1: सत सत सत परम स्वामी
0: गुर प्रसाद किने

0: संत कह दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत कह दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते हीना,
0: संत के हते को रखे ना खोए,
1: संत के दुखन धान भ्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जी करे,
1: नानक संत संग निंदक भी करे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग जौं लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जौं पाए,
1: संत के दुखन त्रिगर जौं बिरमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब को सरे,
0: संत के दुखन ते सब जाए,
1: संत के दुखन नीच न जाए,
0: संत दुखी का थाव कौन है,
1: नानक संत पावे थाव ए भी बात पाए,
0: संत का निंदक मां अत पाई,
1: संत का निंदक हिंट के न पाए,
0: संत का निंदक मां हत्यारा,
1: संत का निंदक परमेश्वर,
0: संत का निंदक राज देही,
1: संत का निंदक दुखिया अरलीना,
0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सदा विजोग,
0: संत के निंदा दुख में दोग,
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
0: संत का दुखी सदा अपवित्त,
1: संत का दुखी

0: संत के दुख ना सुखते करे,
1: संत के दुखी को ना ही ठाव,
0: नानक संत पावे काले मिलाए,
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे,
0: संत का दुखी ते काज ना पहुंचे,
1: संत का दुखी को उद्यान परमाई है,
0: संत का दुखी उजड़ भाई है,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: यो सास बिना मृत के लोथा,
1: दुखी की जड़ की छलना है,
0: अपन भी जापे
1: संत के दुखी को और न रखन हा,
0: नानक संत पावे ताले बार,
1: संत का दुखी ओ मिलाए,
0: जो जाल भी उन मछली कड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पाव के दर नहीं रागे,
1: संत का दुखी छूटे अकेला,
0: जो बुआर तिल खेत भाई रोला,
1: संत का दुखी तरब तेरा,
0: संत का दुखी सब मिथ्या कहत,
1: निंदक का तुरही पाया,
0: नानक जोत इस पाए सोई।

0: अंधकार दीपक प्रगास मां उद्यान में मार्ग पावे
1: त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
0: संतन की बाछो तूर
1: नानक की लोचा पूर
0: काहे बिरलाई है
1: पूरब लिखे का लिखिया पाइए
0: सुख प्रभ देवन हार
1: और क्या तू से चढ़ार
0: कुछ करे सोई सुखमान
1: पूरा काहे फिरे अजान
0: मस्त आई तेरे संग
1: लपट रहे हो रस लोभी पतंग
0: नाम जप हृदय माहे
1: नानक पद से थी कर जाए
0: इस वक्र को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया।

0: हरि
1: अविनाशी ब्रह्म
0: मन की
1: पर नहीं किछ होए
0: सोए
1: पेदा ना
0: गहर गंभीर गई सुजाना
1: ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा निदान दयाल बक्षंद
1: सात्रे की चरणी पा
0: नान के मन ने वनराओ
1: सपूर्ण सरना जो
0: जो कर पाया सोई होगा
1: परम जाका नेत्र खो
0: तिसका मंत्र न जाने होर
1: मंगल सद जाके
0: सर्व तो सुने कर आगे
1: आज मैं राज योग मैं जोगी
0: तब मैं तपिस रग्रस मैं होगी
1: त्याई भगत है सुख पाया
0: नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया
1: लीला की मित ना है
0: सगल देव हरे अवधाए
1: का जन्म के जान है पूत
0: सगल परोई अपने

0: सत प्रसन्न माय समाने
1: सत करम जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत्त
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सफले
1: सत नाम प्रभ का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुटे भाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत भेजन जाके हृदय प्रवेश
1: सत बुझा जे कोई
0: नाम जपता की गत होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपनी मिट कर
1: इसकी सृष्ट करने हाथ
0: अवर भूज कर दुचार
1: ते निक्त कर करते की मित न जाने किया
0: नानक ज्योत इस पावे सो वर दिया
1: इस मन विषम भय विषमा
0: जिन बुझिया ते आया स्वाद
1: के रंग राज जन रहे
0: गुर के वचन पदार्थ है
1: दाते दुख काटने हार
0: जाके संग तरह संसार
1: सेवक सो वड़ पागी
0: जान के संगे

0: अपने सेवक को नाम जपाइए,
1: अपने सेवक की आफत रखे
0: ताकि घर में कोई न लगे,
1: आपके सेवक को कोई ना पहुँचे,
0: आपके सेवक ऊँचे ऊँचे
1: प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नान सो सेवक दिस प्रगटाया,
1: की कीरी मैं कल रखे
0: कसम करे लश्कर कोड़ा लाखे,
1: इसका सास न काट दिया
0: आकुर राखत दे कर हाथ,
1: जतन करत बहुपात
0: इसके करत बिठे जात,
1: मारे न रखे अवर न कोए
0: सर्व जिया का राखा से,
1: आहे सोच कर रे प्राणी
0: जब नानक प्रभु अलख बिटाने,
1: बार बार प्रभु जपिए
0: पी अमृते मंथन कृपिए,
1: तन जिन गुण कपाया
0: तिसके श्रवण नाहीं इंद्रिय हराया,
1: तन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग,
1: जो जन तृप्ताने
0: मंथन नामे नाम सुहाने,
1: बैठत सोवत नाम
0: को नानक जन।

0: बखानो
1: तेज का गुण का एक ना जानो
0: हर प्रभु सहजूरे
1: कहो नानक से जन भूरे
0: मन मेरे तिन की ओट ले
1: मन तन अपना तिन जन दे
0: जन अपना प्रभु पछाता
1: सो जन सर्व दुख का दाता
0: सर्व सुख पावे
1: किसके दर सब

0: स्पर्श चरणगत निर्मल रीत
1: संग्राम गुणरव
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे
1: भजन कर आकार
0: मन संतोष खातम पति आने
1: गुरु अख्यो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे के होए संत
1: बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस पावे तिस लए मिलाए
1: एक पुस्तक तने
0: सात पुरख पूरन विवेक
1: भूल पोचत प्राणी
0: अगल मगोचर प्राप्त निर्वाणी
1: आहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि हिम्मत के ना पाए
1: भगत बंधन नित करे
0: चरण कमल हृदय सिमरे
1: सतगुरहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस प्रसाद सा प्रभु जपने
1: हरस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सोए
1: पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन प्रगटे गुस्तास
1: हर हर का नाम ले
0: सच उपदेश सेवक को दे
1: माया के संग न ले
0: मन में राखे हर हर एक
1: तार दीपक प्रगस
0: नानक परमो दुख